महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़े के, शोला जो भड़े के, पहलू में बेफरार दिल, बेफरार दिल।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

0: देखता एक हर सीन हजारों इसमें मारा मारी से भरपूर ठंकर करके
1: पाचाने में
0: घोड़ा भर के
1: पाचाने में
0: छाती झड़के
1: पाचाने में
0: देखो मेरे यार जवानी खेल अजब दिखलाए
1: हाँ हाँ दो दीवाने
0: आए
1: अरे एक तमाचा
0: ला

0: पर भाषण भाषण जिस पे होती है नेता की जय जयकार। पेरिस लंदन
1: कहाँ जाने में,
0: तुर्की जर्मन
1: कहाँ जाने में,
0: चल वाशिंगटन
1: कहाँ जाने में,
0: देख ले अपनी आँख से कोई चांद।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 10 तारीख जुलाई का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, फ्राइडे 3 जुलाई। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही थी आर जे रशदी जी, डंकेबल फाइन द टू हवेंस। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। यहां से लेकर ठीक दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। और आज का प्रोग्राम में फिर से आप लोग सुनेंगे कुछ मिलजुले संगीत, आप सभी के लिए हम पेश करने वाले हैं। मैं हूं सुभाष शिवगोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम खुद मोर खालमा। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे, शाम में 3 बजे तक। यहाँ का फोन का नंबर है 9390906 पर आप लोग तार कर सके हर एक काम काज के लिए। या तो आप जाइए उजाला के वेबसाइट पर, हमारा वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। और यही आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद आएंगे।

अन्नपूर्ण करो सभी कामना। और इस तरह से सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे और आप लोग उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं। बैंत यानत वैरक तो वैरक से यार दिखाई नहीं यानत वैरक से इन वैरक सालमाओ और जे कोई चाय या तो कॉफी बैठ करके पिए है वेल बैंत यानत ऑनबाइट स्वादिष्ट ऑनबाइट कीजिए एटी स्मार्कल कलमाओ ठीक दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिलजुले संगीत से आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाला हूं। और चलिए प्रोग्राम में तो आगे बढ़ाते हैं एंड आपकी बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे मोहम्मद रफी जी और ये गाना पेश है लीना रामेश्वर के लिए इश्क दे शहर में खुद मोर खलीना।

है तेरी आंखों में वाल प्यार ही प्यार। और इस तरह से मोहम्मद रफी जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं अमस्टरडम शहर से प्रोग्राम को बना रहे हैं आप सभी सुनने वालों के लिए। अगर आपको हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का वास आपका फोन का नंबर है 9 3 3 0 0 8 पर। अगर कोई गाना भी आप सुनना चाहेंगे हम आपको मौका देते हैं यार,

दिल दिल चीचे क्या है बस यार एक बार तू मेरी बात मान लीजिए। और इस तरह से आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों, वीकेंड तो आई गल बा यार, वेल वीकेंड तो आई गल बा। और इर वीकेंड में का करे खोई का पकाओ खो यार, जवाल बात खाऊं एटन।

0: इन आंखों की मस्ती में अविश तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने और वो भी खास करके आशा जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। वाओ मौसम कितना सुहाना है, हर दिल जो प्यार करेगा। अशोक भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, खुद मोर्ख भाई अशोक एंड दलहाक में भाई राकेश।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना

वेल यार, हर दिल जो प्यार करेगा। आई सर से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। इट इज बैना बैना बैना क्वाट 14 यार। वेल इट इज फ्राइडे, या वेल इट इज बैना बैना वीकेंड। एंड वीकेंड वीकेंड में क्या करे, कोई प्यार से दुलार से जो भी आप लोग करेंगे।

कजरा रे कजरा रे मेरे नाइना कजरा रे। और इस तरह से गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुने बोलो। और देखा जाए 10 मिनट बाकी रहा, 10 बजने में 3 मिनट 14। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो सैफ निगम शहर में, जहां पर श्रीमान लक्ष्मण प्रोग्राम को बैठ करके सुने। आई या आई बॉय

अरे सोनी रे सोनी आजा माय वे, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए वेल लेकर बाकी कॉफी वास कॉफी इस लेकर, और चलिए संद्रा भी प्रोग्राम को बैठकर सुने प्यार के साथ, प्यार एंड मोहब्बत के साथ।

इतना पूछो ना कि क्या हुआ है तेरी बातों में। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे इस गर्मी मौसम

और हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक 10 बजने वाले हैं नाद ब्रेक, नाद रखलाम बने के तरफ यार। और एक और ऐसा अंदर आ रहा है गा, वेल बेबी आर, ये वेल बेबी आर आज बनाने वाले हैं लीना रमेश मिर्र एसके शहर में।

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 10 तारीख जुलाई का प्रोग्राम फ्राइडे 3 जुलाई 8 मिनट ओवर 3 खुदमोर खालमाओ आप लोग इस गर्म मौसम में चाहे जो ची करत होइए पकावत होइए या तो घर सफा करत होइए जो भी आप लोग करते होंगे प्यार से

हर जन्म में, हर जन्म में तेरा ही प्यार मिले, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए बेल्ही शहर में, जहां पर मिला भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोरखे।

0: सल बोल्डर में मिला भी प्रोग्राम को सुने हैं, एक कैती पकावे है, कैती उजाला रेडियो का प्रोग्राम बैठ करके सुने हैं।
1: बड़े सुंदर
0: कोक से यार मोई से पकाइए वंत हर तो स्रक्ष वारम दोस्त गरम हो इस महीने बोले पकाई के धर दी जब मैंने

0: उल्फतह। इस तरह से सुबह सिद्धू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। करीबन 10:30 का वक्त है, 38 न्यू हाफ एलफ एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। एंड यू आर उजाला रेडियो है।
1: कि ये इश्क भी कितनी अजीब चीज।
0: अच्छा,
1: ना इसका कोई रंग है ना कोई रूप, फिर भी ये पूरी जिंदगी बदल देता है।
0: सही कर यार।
1: दिल कभी सिर्फ मेरे सीने में धड़कता था, आज वो किसी और की

0: ऐ इश्क तू मुझे इतना बता कि क्यों मेरा नींद तू चुरा ले जाता है। अवले दिल धड़कता था मेरा और अब किसी की और के लिए ये दिल धड़कता है। वाओ कितना मोय कितना बिसाओ।
1: कहते हैं कि तकदीरें आसमानों में लिखी जाती हैं, पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो लगा जैसे मेरी मुकम्मल तकदीर तो मेरे सामने ही खड़ी है। इस आशिकी में मेरा कोई जोर नहीं चला, मैंने तुम्हें नहीं चुना, मेरे इस पागल दिल ने ही तुम्हें अपना मान लिया है।
0: वल यार भाई राकेश पठाई से रसम बोले भाई सुभाष हर द केप और

वेल यार, दिल ने अपना चुना यार। कितना मोय, कितना बिसाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, दिल दिल ने अपना चुना। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए, और मेरे में यहाँ पर इस वक्त माला मुंगार जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं, तो खुद मुर्ख और ये गाना तुम्हारे ना

मेरी हर दुआ में बस तू ही तू। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए सत्य भी प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मूर्ख और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन पौने ग्यारह का वक्त है, बाइना क्वाट फोर अलफ। और केस भी प्रोग्राम को सुने तो केस पठाई से एप बनाएगा आज खरनाल में कौशबांत आलू एक के में अनिल स्वार्थ तेई।

तू मेरा अजनबी और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रही थी। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो अमसलम सही तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे। खुद मोरख मामी जी आओ चलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ और इस गाना मोई से सुनिए प्यार के साथ। मामा जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं।

आज जीने की तमन्ना है यार, जीना है तो जियो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एन अब की बार जबल जुआड़ उजल रेडियो का प्रोग्राम।

पूरा पन्ना पन्ना के हीरा की तमन्ना है कि मुझे मुझे हीरा हीरा मिल जाए यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो बैना बैना बैना एल्फिर यार खसला यू आर वीकेंड रेडियो।

वेल यार तेरे आने से हर शाम बोले मेरी रोशन हो गई है, जब तू आई गए तब मेरा दिल भी खुश हो गया। वेल हमारे प्यारे सुने वाले नाद ब्रेक नाद रखला में नक मित्र गनवा सुन के इतना मोह लगे है, हर एक बतियन इतना अच्छा लगे, बोले तू आई गए तो मेरा शाम सब पूरा हो गया यार। नाद ब्रेक

Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

उज्याला रेडियो कार्यक्रम करीबन 10 मिनट बाद ही थोड़ी कल है 11 बजकर 3 मिनट ओवर 11 ए खुद मोर खालमाओ आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड फैन वीकेंड तू खवैन हमारी तरफ से वीकेंडों में चाहे जो जी करिए गर्मियां में मोई से प्यार से सब चीज प्यार से करिए दुलार से।

12 बजे तक आप लोग के साथ हेतलास उर्च खत न्यू एन यार एक घंटवा इतना हल्दी दोन हो देखत देखत दोन हो जाए वीकेंड वीकेंड है और चलिए वीकेंड में

जिंदगानी है मेरी महबूबा, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जय हो दौरप में, खास करके सरजू मिश्र भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, बोले अमंग स्पांग या दंग केवल भाई जी। तो चलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ,

0: बल यार मेरे सपनों की रानी, कब आएगा तू यार, कब आइए आओ। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम 25 मिनट ऑन ऑफर एल लव। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे,
1: अली सुर के प्यार भरे
0: बल्खिया में सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने, खुद मोरख सुनीता ये गाना

ओ मेरे दिल की चैन, और बोले तू मेरा हाथ पकड़ ले, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने युवा उजाला रेडियो है एंड फियाना शहर में परिवार अवतार भी प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मोर खया।

पल यार प्यार हुआ है एंड इकरार हुआ है, क्यों क्यों ये दिल डरता है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनी, और देखा जाए सुतमेर में संता भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे हैं, तो संता खुद मूर्ख। चलिए गाना

मेरे दिल में क्या है, बस यार तू जो तू मांगे जाने, तो हम तो के बता दे ही, हमारे दिल में खाली प्यार है, प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार। और चलिए अब की बार तो फैंस पोल्डर में एमी जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने तो ये गाना मांग के यवल, दिल के अरमा आंसुओं में बहे गए।

दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन पौने 12 का वक्त बैन अकवत फॉर 12 आउट देखा जाए होफ दौर में मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने अपने सुनुषा के साथ. एंड रीता गाना मांग के है सभी सभी सुनने वालों के लिए.

बल यार चलो एक बार हम दोनों फिर से अजनबी बन जाए। वेल हमारे प्यारे सुने वालों, जो भी आप लोग आज पकाइए, जो भी आप लोग खाइए पिए, मौज से पकाइए, मौज से रहिए। वेल एंड यू आर उजाला रेडियो है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।

सौ सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों रहेगा, नरसों भी रहेगा। जब भी आप प्यार करेंगे तो तब भी हम आपके साथ रहेंगे। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। लेकिन जय सबीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोर।

0: वल सावन का महीना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक चार मिनट बाकी रहा 12 बजने में। इसका मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। यही आशा है कि जिस तरह से प्रोग्राम को हमने बनाए सजाए आप लोगों के लिए, आप सभी सुनने वालों को प्रोग्राम को भी आप लोग सुन करके पसंद भी करें होंगे। हमारे साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। आप लोग मौज से रहिए, अपना शुक्रवार का दिन और रात मौज से बिताइए। जो भी करना है प्यार से करिए यार, सब चीज प्यार से करिए एंड दुलार से करिए, नहीं तो ना करिए। जैसे ही गनवा सुन के है अपना दिल तो आवारा यार, अरे यार
1: ना जाने किस पे आए,
0: या वेल ना जाने किस पर आएगा। तो आप लोग मौज रहिए और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। जो भी कहना बोल दे यार कि हमें तुमसे प्यार है।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ैफ़न तख्तख्यार औत पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति, लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता, पतो इस्साहिरा भोला भत्तू और तीन दामाद राजन धनीराम सिंह सांदर फान जेल्डरन और रिश्तो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम जोयतोस मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला के मृत्यु अम्स्टरडम जोयतोस में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ैफ़न तख्तख्यार औत पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति, लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता, पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद राजन धनीराम सिंह सांदर फान जेल्डरन और रिस्तो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम जोयतोस मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला के मृत्यु हो गई है। अम्स्टरडम जोयतोस में पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शुक्रवार के शाम में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक एटफार्ड सेंट्रम वेस्टगार्ड के मुर्दालय अम्स्टरडम ओक मेरवेह 275 ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 3 बजे मोरखन सात डाक द्री उर किए जाएंगे। वेस्टगार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेह 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो डे अब प्लस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो. ये है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के जरिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं कॉफी चाय मेरा शो. मार सुनो लो फंदाख आज ना हो पाएगा आज ना हो पाएगा वांट सवाल आनंद और सिक हम लोग के काम बलावे है क्या यानी तुलक के इस राज्य में तुलक को कौन से नया काम ना बोल सके ला इस ऑन्स हॉबी. आज मिदागशो हम लोग ना बनाए सके ला वांट वे हैव तुलक अंदर व्यवसायमहित दी फोरांग है बे दिस. आज हम लोग कॉफी चाय मिदागशो ना बनाए पाएंगे मार ब्लैक लाइस्टर हो ही सके हैं कि ध्यान नहीं तो सोमवार के एक्स्ट्रा एडिशन रहेगा कॉफी चाय मेरा शो का. दस हम तुम लोग के नाम मायूस करें एक वेल यूली नहीं तुलना चला दस ब्लैक लाइस्टर ना उजाला रेडियो एट काउंट सेंड अब तो मॉर्गन एक्स्ट्रा एडिशन हैवे ऑफ अंदर्स सोमवार.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

का मतलब हुआ यहाँ से उजाला वीडियो के जरिए पेश किया जाएगा फरमाइश। Mijn hoe Lloyd Mahabir, een hele goede middag allemaal op deze vrijdag, zonnige vrijdagmiddag. Aatje Sukkerwaar, de star July. Auraatje. Vermaais, Parivaar, Thakur Klee. Almere ke rehne wale Dulhan Raja Girish Thakur aur Almere ke rehne wale Dulhan Rani Shivani Ratan ke vivah sanskar kal sanichar ko badi dhoom dham ke sath hone wale hain. Badhaiyan shubhkamnaen pesh kar rahe hain, bhagwan se prarthna kiya ja raha hai ki jodi ko hamesha khush rakhe, tandurust rakhe aur jab tak zindagi rahe aap dono saath saath mein rahe. To chaliye hum shuru karte hain ekdam aap log ke farmaish hai. अलमीर के रहने वाला घीरेश ठाकुर के विवाह संस्कार कल होने वाला है शिवानी रतन के साथ खुशी के मौके पर आम्सदम अलमीर और द्रोंटन से। ये संदेश है तुम्हारे लिए घीरेश, तुम्हारे लिए संदेश है नाम इज द फैमिली। गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए और ढेर सारा आशीर्वाद के साथ और प्यार के साथ ये गीत हम जो आपको सुनाने को जा रहे हैं घीरेश ठाकुर तुम्हारी विवाह जो कल होने वाले शिवानी रतन के साथ। नाम नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाय सिंह, नाती के लिए माँ रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर की तरफ से बेटा मौसी जयवंती हीरा सिंह, बेटा के लिए मामू रॉबी एंड मामी अनमिक हीरा सिंह की तरफ से बेटा के लिए पेश किए जा रहे हैं बधाइयां शुभकामना के साथ। गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार के साथ पेश किया जा रहा है।

आलमीर के रहने वाला है गिरीश ठाकुर की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। आलमीर की रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन के साथ विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर आमस्टरडम और आलमीर द्रोंदन के रहने वाले हैं नाना सोनी हीरा सिंह, नानी माइनी हीरा सिंह, लाई सिंह, नाती के लिए माँ रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर की तरफ से बेटा के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह, बेटा के लिए मामू रोबी और मामी अनमिक हीरा सिंह की तरफ से बेटा के लिए बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश की गए ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर। आलमीर से माँ प्यारी प्यारी माता रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर, बेटा के लिए भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर, भाई के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ प्यार दुलार के साथ पेश है।

दूल्हे राजा धीरेज ठाकुर और दुल्हन रानी भी अलमीरा में रहते हैं। शिवानी रतन की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर माता रीता हेना सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के लिए, भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश किए। धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर अमस्टरडम से नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाई सिंह नाती के लिए, मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां और शुभकामना के साथ पेश है।

ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ कल होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर आमस्तदाम से सोनी हीरा सिंह और माइनी हीरा सिंह लाई सिंह नाना और नानी जो होते हैं प्यारा प्यारा नाती के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ पेश के धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर बहन गौरी ठाकुर भाई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और बधाइयां शुभकामना के साथ पेश करें।

धीरज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल सनीचर को होने वाले हैं बड़ी धूमधाम के साथ। दो परिवार के मिलन होने को जा रहे हैं कल और इस खुशी के मौके पर आलमीर से बहन गौरी ठाकुर भाई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई और शुभकामना के साथ ये नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में उजाला रेडियो ये है और उजाला रेडियो के जरिए फरमाइशें जारी किया जा रहा है। धीरज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाला है खुशी के मौके पर आलमीर से भाई अनीश ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत और शुभकामना के साथ पेश करें।

धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर भाई अनीश ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां शुभकामना के साथ पेश किए। धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर द्रोणधन के रहने वाले मामू रोबी और मामी अनुमी खेरा सिंह बेटा के लिए भाई मनवल भाई के वास्ते बधाइयां शुभकामना के साथ पेश करें। सुनिए आप

कल जबकि शनिचर 11 तारीख जुलाई है तो अलमीर के रहने वाले दुल्हराजा धीरेज ठाकुर और अलमीर के रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं खुशी के मौके पर। रौंदन के रहने वाले हैं मामू रवि और मामी अनुमिक हीरा सिंह बेटा के लिए एंड भाई मानवेल भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां शुभकामना के साथ पेश किए। धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर माता रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर प्यारा प्यारा लाडला बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ प्यार के साथ पेश करें।

धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन ये दोनों रहते हैं अलमीर में और बारात ही अलमीर में जाने वाले हैं। इन दोनों के विवाह संस्कार कल होने वाले। खुशी के मौके पर प्यारे प्यारे माता और पिता रीता हीरा सिंह और अनिल ठाकुर बेटा के लिए बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के आशीर्वाद के साथ धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश कर रहे हैं प्रोग्राम में भाई अनीश ठाकुर भाई के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार और मोहब्बत के साथ।

अलमीर के रहने वाला है धीरेज ठाकुर और अलमीर के रहने वाली शिवानी रतन की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। इस खुशी के मौके पर भाई जो कि अलमीर में रहते हैं, भाई अनीश ठाकुर, भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां शुभकामना के साथ पेश किए। परिवार ठाकुर थोड़ी देर के लिए हम फरमाइश को रोक देते हैं, ना तो कमर्शियल ब्रेक, बाकी के फरमाइश उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा। समस्त परिवार ठाकुर और समस्त परिवार रतन को ये विवाह संस्कार जो कि कल होने वाला है, बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे। विवाह संस्कार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है सुनने वालों, स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl पर 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Dus, doe mange vermaaien, Steven. Kon ik je bijaan hè? Kon ik je moedersenskaar hè? Kon ik je verjaardag hè? Ja, jo bi goeie ke maak je per. Of ben je zoveel jaren getrouwd? Of je wil iemand verrassen met mooie nummers? Dat kan allemaal. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio.

ये है उजाला रेडियो सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइश हम जारी करें परिवार ठाकुर के वास्ते। आज जबकि शुक्रवार 10 तारीख जुलाई, तो आज है धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के वास्ते फरमाइश पेश किया जाएगा। और आज के लिए सिर्फ नहीं मार मोरखनो, और आज 5 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे सुन वालों। परिवार ठाकुर परिवार रतन एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं, और इस खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश करने वाले हैं अमस्तम से नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाई सिंह। नाती के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश है।

कल जबकि शनिचर है, शनिचर 11 तारीख जुलाई, धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाला है। इस विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर आमसदाम से नाना सोनी हीरा सिंह और नानी मायनी हीरा सिंह लाई सिंह नाती के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए बधाइयां और शुभकामना के साथ फरमाइश के। गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाला है। इस खुशी के मौके पर और मेरे से भाई दैनी, भाई के वास्ते भाऊजी कायल मताई, देवर के वास्ते बधाइयां शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें।

गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाला है। इस खुशी के मौके पर अलमीरा से भाई दैनी, भाई के लिए भाजी कायल मताई, देवर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां शुभकामना के साथ फरमाइश के। गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाला है खुशी के मौके पर। लेली सास से ओम रेमी एंड शारदा शिव नंदन बेटा के लिए बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।

गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाला है। खुशी के मौके पर लेली साथ के रहने वाले रेमी एन शारदा सिंहनंदन। ओम रेमी एन तंत शारदा सिंहनंदन बेटा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर रोंतन के रहने वाले मामू रॉबी एंड मामी अनमिक हीरा सिंह बेटा के लिए मानुवेल भाई के लिए बधाई शुभकामना और प्यार दुलार के साथ पेश करें।

कल यानी 11 तारीख जुलाई को अलमीर के रहने वाले गिरीश ठाकुर और अलमीर के रहने वाली शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं। खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में द्रोंदन के रहने वाले मामू रॉबी एंड मामी अनमिक हीरा सिंह बेटा के लिए मानुवेल भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश किए। गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर। लेलिस्तान से भाइयों अमरीश सुबराज और प्रशांत शिवनंदन भाई के वास्ते बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

जबकि शनिचर 11 तारीख जुलाई है, तो धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार है। इस खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में लेलिस्तान से भाइयों अमरीश, शुभराज और प्रशांत शिवनंदन भाई के वास्ते बड़े प्यार मोहब्बत के साथ शुभकामना के साथ। रेडियो ये है धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन, ये विवाह संस्कार बधाई हो बधाई हो बधाई हो। युवा उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश जारी है, धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल है खुशी के मौके पर। इस बार नहमा को फरमाइश करने वाले हैं बहन अलमीरे में रहते हैं बहन गौरी ठाकुर, भाई के वास्ते बधाइयां शुभकामना प्यार और मोहब्बत के साथ।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए नहमा जो आपने सुनी इस पर फरमाइश लाए कि अलमीर के रहने वाला धीरेज ठाकुर और अलमीर के रहने वाली शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर बहन गौरी ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई के साथ पेश किए। धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल शनिचर 11 जुलाई को होने वाला है और इस खुशी के मौके पर इस बार आमस्टरडम से नाना सोनी हीरा सिंह एंड नानी माइनी हीरा सिंह लाई सिंह नाती के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश करें आशीर्वाद के साथ।

जब किसी ने गिर 11 तारीख जुलाई है तो आलमीर के रहने वाले हैं धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं। इस शुभ अवसर पर नहमा को फरमाइश करे थे प्रोग्राम में अमस्टरडम से नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाइट सिंह नाती क्लेम मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और आशीर्वाद के साथ। धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाले हैं और इस बार नहमा फरमाइश करे हैं द्रोमतन से मामू रॉबी और मामी अनमी खेरा सिंह बेटा के वास्ते मानवल भाई के वास्ते बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और शुभकामना के साथ पेश है।

गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन, ये विवाह संस्कार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल आप दोनों के विवाह संस्कार होने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि आप दोनों हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और जब तक जिंदगी रहे साथ साथ में रहे। ना तो कमर्शियल ब्रेक, बाकी की फरमाइश जरूर सुन लेना उजाला रेडियो पर। जो भी खुशी के मौके पर फरमाइश देना है, 59 vragen voor maar 100 euro op You Are Ujala Radio। Blijf luisteren, zometeen ben ik weer terug na de commercial break. Sundarina Sundijana.

Takur और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस शुभ अवसर पर इस बार नहमा को फरमाइश करने वाले हैं और मेरे से भाई दैनी, भाई के वास से भाऊजी कायल मताई, देवर के वास से बधाइयां, शुभकामना और प्यार मोहब्बत के साथ पेश है।

0: कल जबकि शनिचर 11-13 जुलाई है तो गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं इस शुभ अवसर पर। नहमा को फरमाइश के अलमीर से भाई देनी, भाई के वहां से भाजी कायल मताए, देवर के वहां से बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ। गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाला है मोरखनी से सोफेर, अलमीर से माँ रीता हीर सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के लिए, भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर भाई के वहां से बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश है।
1: मैडम थोड़ा अंदर आइए, पैरों पर ये लगाना हंसों का जोड़ा।

कल जबकि शनिचर है तो कल बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संस्कार होने वाला है गिरीश ठाकुर का शिवानी रतन के साथ विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में और मेरे से माता रीता हेरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के लिए भाई अनिश और बहन गौरी ठाकुर भाई के वास्ते बधाई शुभकामना के साथ प्यार दुलार के साथ फरमाइश के प्रोग्राम में उजाला रेड के जरिए फरमाइश जारी किया जा रहा है सुनवल Morgen dan is het 11 juli. Gireesh Thakur aur Shivani Ratan ke vivah sanskar hone wale hain. Is khushi ke mauke par. Amsterdam se Nana Soni Hira Singh aur Nani Maini Hira Singh Lai Singh Nati ke liye Mausi Jayavanti Hira Singh beta ke liye badhaiyan shubhkamna aur aashirwad ke saath pesh kar rahe hain.

कल से नीचे 11 तारीख जुलाई को अलमीर के रहने वाले हैं धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं खुशी के मौके पर। खासकर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में आमस्तम से नाना सोनी हीरा सिंह और नानी मायने हीरा सिंह लाय सिंह नाते के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के वास्ते बधाइयां और शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के प्रोग्राम में।

गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर इस बार प्रोग्राम में फरमाइश करने वाले हैं अलमीर से माता रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ पेश करें प्रोग्राम में।

कल सनी चिरकोट 11 तारीख जुलाई जबकि हैं तो घेरेश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं। खुशी के मौके पर प्यारे प्यारे माता और पिता रीता हीरा सिंह और अनिल ठाकुर बेटा के वास्ते बधाई और शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश किए। धीरेश ठाकुर और शिवानी रतन की विवाह संस्कार कल होने वाले बड़ी धूमधाम के साथ खुशी के मौके पर। सुरीनाम के क्वारंटाइन पोल्डर के रहने वाले नाना डायमंड हीरा सिंह नाती के लिए बधाइयां शुभकामना और आशीर्वाद के साथ पेश करें।

Iris Thakur और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर 11 जुलाई को ये विवाह संस्कार है कल और इस खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में सुरीनाम निकेरी क्वारंटाइन बोल्डर के रहने वाले नाना दायमान हीरा सिंह नाती के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद के साथ गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस शुभ अवसर पर अलमीर से भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत प्यार और दुलार के साथ शुभकामना के साथ पेश करें

अलमेर के रहने वाले धीरेज ठाकुर और अलमेर के रहने वाली शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर। अलमेर से भाई अनीश एंड बहन गौरी ठाकुर भाई के वहां से बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश किए। धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस शुभ अवसर पर फरमाइश कर रहे हैं प्रोग्राम में आमसुदाम अलमेर और द्रोंतन के रहने वाले नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाल सिंह नाती के लिए, माता रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के लिए, मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए, मामू रोबी और मामी अनुमिक हीरा सिंह बेटा के लिए बधाइयां और शुभकामना के साथ पेश करें ये नामा।

अमीर किरण वाले धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कलहन में होने वाले हैं बड़ी धूमधाम के साथ। और इस शुभ अवसर पर नहमा को फरमाइश करे थे अम्सदम अमीर और द्रोंतन के रहने वाले हैं नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाई सिंह नाती के लिए, माता रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के लिए, मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए, मामू रोबी और मामी अनमिक हीरा सिंह बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश किए आशीर्वाद के साथ। गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश करें प्रोग्राम में अलमीर से माँ रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के लिए, अनीश ठाकुर और गौरी ठाकुर भाई के लिए बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार के साथ आशीर्वाद के साथ पेश है।

अलमीर के रहने वाले हैं, धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर अलमीर से माता रीता हीरे सिंह और पिता अनिल ठाकुर, बेटा के लिए भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर, भाई के वास्ते बधाई, शुभकामना, प्यार, दुलार, आशीर्वाद के साथ पेश किए परिवार ठाकुर। थोड़ी देर के लिए फरमाइश को हम रोक देते हैं, चले बढ़ते हैं आखिरी घंटा की तरफ जिसमें बाकी की फरमाइशें हम पेश करने वाले हैं। धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन, नोहमास फन हार्ट गेफेलिसिटेट नामज द हेली थीम फन उजाला रेडियो। कल आप दोनों की विवाह होने वाला है, भगवान से प्रार्थना है कि आप दोनों हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ रहे। प्रोग्राम को सुनते रहना, फरमाइश देना है सुनो लो जो भी खुशी के मौके पर, स्टूडेंट मेल ना info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio.

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Het gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam op de A10. Tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1/2 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: URU Jana Radio hier is in Wallo. उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम इस घंटा में बाकी के फरमाइश आज के वास्ते पूरा करने को जा रहे हैं एंड मॉर्गन दान तुसन 12 एंड 2 यूर उजाला रेडियो के जरिए और भी फरमाइश है परिवार ठाकुर के लिए परिवार ठाकुर परिवार रतन एक शुभ शाम आज के वास्ते फरमाइश जारी किया जा रहा है धीरेश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर अलमेर अमस्टरडम और द्रोंद के रहने वाले माता रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के लिए भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर भाई के लिए नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाची नाथ के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के लिए मामू रोबी और मामी अनमिक हीरा सिंह बेटा के लिए भाई मानुअल हीरा सिंह भाई के वास्ते बधाइयां और शुभकामना प्यार दुलार के साथ इन हम आपको फरमाइश करें

जबकि शनिचर 11 तारीख जुलाई है, तो विवाह संस्कार होने वाले हैं घीरेश ठाकुर का और वो भी शिवानी रतन के साथ विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर। नहमा को फरमाइश करते हैं प्रोग्राम में माता और पिता रीता हीरा सिंह और अनिल ठाकुर, बेटा के वास्ते भाई अनीश और गौरी ठाकुर, भाई के वास्ते नाना सोनी हीरा सिंह और नानी मायनी हीरा सिंह, लाई सिंह नाती के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह, बेटा के लिए मामू रोबी और मामी अनमिक हीरा सिंह, बेटा के लिए भाई मानुवेल हीरा सिंह, भाई के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ फरमाइश के। घीरेश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर अलमीर से भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत के साथ पेश करें।

कल जबकि शनिचर 11 तारीख जुलाई है सुनने वालों तुम धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं और इस शुभ अवसर पर नाहमा को फरमाइश के अनीश ठाकुर और गौरी ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत के साथ धीरेज ठाकुर और शिवानी रतन धीरेज ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर नाहमा को फरमाइश करे हैं माता रीता हीरे सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत आशीर्वाद के साथ

अमीर के रहने वाले गिरेश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर प्यारे प्यारे माता और पिता अलमीर शहर से। खासकर नहमा को फरमाइश के माता रीता हीरा सिंह और पिता अनिल ठाकुर बेटा के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और आशीर्वाद के साथ। गिरेश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर। अम्सदम से नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाइसिंग नाती के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत आशीर्वाद के साथ पेश करें।

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में नाम जो आपने सुने हैं इस पर फरमाइश लाए गए सुनने वालों, खासकर जबकि कल 11 तारीख जुलाई है तो कल आलमीर के रहने वाले हैं घेरेज ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाला है। इस खुशी के मौके पर आमस्टरडम से नाना सोनी हीरा सिंह और नानी माइनी हीरा सिंह लाची नाथी के लिए मौसी जयवंती हीरा सिंह बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना के साथ फरमाइश के। गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं और इस विवाह संस्कार के शुभ अवसर पर इस बार भाई धनी भाई के वास्ते भौजी कायल मताई देवर के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत के साथ पेश करें।

गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर भाई देनी, भाई के वास्ते भाजी कायल, मताई देवर के वास्ते बड़ी प्यार दुलार महावत के साथ फरमाइश के गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन इन दोनों की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाले हैं। और इस विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर आज के प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश कर रहे हैं भाई अनीश ठाकुर एंड बहन गौरी ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत के साथ।

0: मीर कहने वाले हैं गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार कल शनिचर 11 तारीख जुलाई को होने वाला है। खुशी के मौके पर आमिर के रहने वाले भाई अनीश ठाकुर और बहन गौरी ठाकुर भाई के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश किया।
1: दुख सहना मां बाप की खा।
0: गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन ये विवाह संस्कार बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। उजाला रेडियो की फुल टीम की तरफ से बधाई शुभकामनाएं पेश है समस्त परिवार ठाकुर समस्त परिवार रतन को। भगवान से प्रार्थना है कि जोड़ी को हमेशा खुश रखे तंदुरुस्त रखे जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे। आज के बाद से फरमाइशें सुनने के लिए धन्यवाद। बाकी के फरमाइशें कल दिन में 12 बजे से पेश किया जाएगा उजाला रेडियो पर। आज के बाद से शुभ शाम शुभ रात्रि। सुन वालों उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो ईमेल info@ujala.nl।
1: माँ बाप की
0: 15 vragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio.

0: तू देख ले यार brazzafest.nl.
1: Now I don't want to go back. Fall in love with she. I come down to Trinidad and see a sweet lady.
0: Programa jo hai ga lamba chaura hai ga be aapke hum bataila. कौन कौन बेंचेस खेलेगा अल टॉप फॉर्मेट्स सब जबर जबर फॉर्मेट्स जो है नीदरलैंड में सब वहां पे रहेगा अख्तर अलका इको नामी सी हाईगा ससेंद्र अलमा अल टॉप फॉर्मेट्स दिए फर्दीनन हम ऑफ सोन स्टेज पे स्टैंड प्लस ऑफ एस के मेन स्टेज पे वहां पे रहेगा दुई गो हाल दो एरियाज हाल इन जो हैगा बहुत लंबा चौड़ा बड़का स्टेज ओमन रहेगा भी और एक तवेदा हाल जो है वो रहेगा एक्ट फूड कोर्ट और मतलब है फूड लॉन्च कोर्ट हमें चाहिए बोले के तू वहां पे लॉन्च कर सकेगा तू वहां पे अपन खाना पीना खाइए और तू कुर्सी तफरा तोड़ खाती रहेगा वहां पे जहां पे तू रोस्तक से बैठ के ई फंचस खाई सकेगा अपन परिवार के साथ मैं जफरीन डोंट मिस दिस हियर विल यू एफ बाय साइन विद द होल फैमिली Het is natuurlijk een familiefestival. Dat houdt in dat iedereen welkom is. De kinderen zijn welkom. Maar ook Aji Aja, Nani Nana. En Mousie.

0: Food Plaza en Lounge, natuurlijk heerlijke snacks.
1: Sweets.
0: Natuurlijk ook fashion. Lifestyle gifts. Zie dat dan. Brasa vibes. Doe aan je. Eind augustus, zaterdag. 29 augustus en zondag 30 augustus. Den Haagse Hermeyer. Gia. Trade and Event Center. अंदर रहेगा इबर्स जोन हैगा मेला जोन हैगा अंदर में रहेगा तू जाला कहेगा यार तू जानेगा जबरदस्त तू आ सकेगा ओपनबार फरफूर से बहुत मखलक हैगा मत तू आ सके अपन ऑटो से भी तू आ सके ट्रेम से भी जोन दनाख में मिलेगा तू जानेगा ट्रेम 16 बस 24

संजय जोधा लाइव ऑन स्टेज बड़ा सा फेस्ट पर यार कौन ये उखनी थे वेल हम वहां पे रहबे और ये गनवा जो आएगा बॉय द हाई कवोन डांसर हम काम धंधा वहां छोड़ के हाई कवोन डांसर द बेनिक ऑफ द डांस फ्लोर यही तो होगा

लाइफ ऑन स्टेज ब्रासफेस्ट पर आप सुनेंगे ये गीत मैं संजय जोधा एक्सक्लूसिव के साथ यस मैं सन आई का म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव लाइव ऑन स्टेज वाओ वट मोमेंट गाट दैट वर्डन हम तो के बिलीव करिला हिला देखो हम लोग यार दनहा शहर हम लोग हिला देखो

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ैफ़न तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति, लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता, पतो इस्साहिरा भोला भत्तू और तीन दामाद राजन धनीराम सिंह, सांदर फान जेल्दरन और रिश्तो लाजारोफ के ससुर, सिद्धार्था, संजय, जोशुआ और सेल्फाना के नाना, अम्स्टरडम ज़ुइटोस में यहोफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला के मृत्यु अम्स्टरडम ज़ुइटोस में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ैफ़न तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति, लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता, पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद राजन धनीराम सिंह, सांदर फान जेल्दरन और रिश्तो लाजारोफ के ससुर, सिद्धार्था, संजय, जोशुआ और सेल्फाना के नाना, अम्स्टरडम ज़ुइटोस में यहोफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला के मृत्यु हो गई है। अम्स्टरडम ज़ुइटोस में पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 3 बजे मोरखन सातरख द्री उर किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

0: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान, सुनिए उजाला रेडियो पर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: Weer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है। उजाला रेडियो की प्रस्तुति, उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है।

दे तू, क्योंकि सावन आया है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं एंड न्यू श्रेया घोषाल एंड शॉन। मुझे तुम से मोहब्बत है।

भाई हैं बीनू कोटरावर, दो विवाह होने वाले हैं, दो शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रहा हूँ, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: दिस इज जलवे रेडियो डोंट यू मे
1: भैया सिपाही की जिंदगी का क्या भरोसा, आज की रात इकट्ठे गुजारेंगे। सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.